0: موديها كم ميجا هاتس تبع هي فعلا.
1: एल नवे एक मकु आ अडे
2: आहों से तूने ये क्या कह दिया दिल ये दीवाना धड़कने लगा
1: आ बीटें

0: साह से। बाय लवता की नुनी में वाहक तके। ये वाहक ता मिहारु आ अड़का आ रूह काय को। ये फोरिया ये जोश किंगुस्तनी मुलिंग एहिं दुनिया का।
1: दिवाली ऐसा क्या वाइट था तू जाऊन उठना बिठना लाऊं ये की तू तेरे भाई के राड़े नहीं देखा तू इधर कच्चे तू
0: हाँ वो अधे रिमिक्स की बदले नो एक हमको लव एक निस्ते आ देरू में को में हो मत वही के मिंदरु दे जहार रिपीट अंगार दो हुगेरे दिहे जहार अधे बुद्ध दो हुगेरे बार जहार
2: नॉक नॉक तेरा बाप
3: Version 2.0
4: Version 2.0

नीति तालीम हासिल करी दिल्ली के बिरला बालिका विद्यापीठ स्कूल दौर का केव मोड़ूमुगे इतर हरकैत नीति वाणी वर फुरी हम बैवरीफ एगुत स्कूल के म्यूजिक बैंड के मुहिम मेबर एगुत मसे के कुरमायक जेहि जे के फस्ट सहार दिल्ली के रिपब्लिक डे पेरेड गे सेना बैवरीफ मिवणी इंडिया के नेशनल कैडेट कोप्स एनसीसी के मोड़ कैडेट के मगाम होदा एक कामयाबायक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के इंडिया तमसिल कुरमुगे शरफ सेना लिपिगे गोसमिवणी मिगे इतर ड्रामा या नेशम हरकैत नोन फोरिया नीति मसे के कोफमिवणी मत अलीम हासिल कुरी दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज कॉलेज गौड़ूनिवर्स म्यूजिक हरकैत एम कुरी गेनिगेदी नीति के हयात लिबुण मिफद कुडेर मुस्सन तजुबा तक मियदेना कामयाब शख्सियत बट्टं कुरम एम बोड़ बोडंग हीवेदे मुहिम बिंगा का फाहकोल बचे नीति आ गुण हुरी सुवाल तक मौलूमात हिमनाल दिगे नीति के रीत लवते हिमनाल दिगे मीरे के शोकुरिया मिगे निशोक बैवेरिवे नीति आ बेहगत सुवाल कोल नीति के लवे अड़ू हाल मेनुजम वाणमा पीएसएम ऐप में दुर्को मेसेज कुर मुंदानी डीएफएम 91 मी पेजा

मेरे गेंग अड़गुम प्रोग्राम निम्बा लावागो तुम्हें जो निशा हो उम्मीद में कुरेवोनी कुरानी हम मी गड़ी खा मटी उनको लें ती फरियत कवर रीत लव तक गेनेस दवन कमा अन्ना हफ्ता आगे सम होम दो मिफद को मिस फंड आने कबे मालूम तक रीत लव तक आए की अड़ में बदल को लाना मिगड़िया शाह हो अकेला वरंग फायर वागुत को लगेंगे असलामुअलैकुम।

0: हाद मोले बार अफारी तेंगे
1: ऑफ कोर्स
0: एक थी लड़की अन्ननी को हिसाब कर
1: तानिया कॉन्सर्ट का
0: वाह वाह वाह वाह ओके